0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

श्रीगणेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते परारबिन्दे नपदारबिन्दं मुखारबिन्दे विनिवेशयन्त्यं वचस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सुप्रभातम 94.9 मेघाहर्ष मेरो मन को रेडियो नेपालवाणी एफएम को प्रातः कालीन कार्यक्रम भारत प्रस्थानी में प्राविधिक मित्र मनीष अधिकारी का साथ में कार्यक्रम संचालक दुर्गा ढंगेल को स्वागत हमी बिहानी के समय में आज को तिथि मिति के बारे में जानकारी लिं आज मिति विक्रम सम्मत 2083 साल वैशाख महीना को 25 गते बुधवार अर्थात शुक्रवार श्री सूर्य उत्तरायण वसंत ऋतु रौद्र नाम संवत्सर शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष को आज षष्ठी तिथि 8:50 रहने तत्पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होने उत्तर साधा नक्षत्र तस्ते कर आनंदादि योग में आज आनंद योग ईस्वी सम 2026 मे महीना को आज 8 तारीख हो भने मकर राशि का चंद्रमा सूर्योदय 5:22 में सूर्यास्त भरे सांझ 6:41 में होने आज भद्रा 8:50 देखि बेलुका को 21:26 अथवा 9:26 रहने आज रेड क्रस दिवस सुंदर बिहानी में छदरण श्रोता बुधवार शुक्रवार को दिन कार्यक्रम को शुभारंभ करूँ मंगल गांव।

शर्मा क्रॉम्पटन ब्रांड का एयर कूलर सीलिंग फैन स्टैंड फैन मिक्सर र आयरन को खरीद में एक्साइटिंग ऑफर पाउन होस हर एक 15 दिन में क्रॉम्पटन को मिक्सर र बम्पर लक ड्रामा माइटिया डबल डोर रेफ्रिजरेटर जितने मौका पनी नागरिकता मात्र भाई पुख्सा सहज ईएमआई मार्फत खरीद करना सकिन्छ।

BCL का विभिन्न होम अप्लायंसर को खरीद में कैशबैक तथा श्योर साउंड गिफ्ट, वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक, एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र नागरिकता मात्र भए पुग्छ। सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ। ग्लोबल नंबर 1 TCL इंस्पायर ग्रेटनेस। एक्सपीरियंस।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजे को छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।